0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा

के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही

0: उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब से वदाई जलंधर केंद्र। ज्ञान अमृत

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद

दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

आओ हुण तुहानू परिचित है ते जानकारी दे दिए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम्स की। सवेरे 7:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम सोनी सवेर। 8:40 ते तुसी सुनोगे पंजाबी फिल्म म्यूजिक का प्रोग्राम महक पंजाब की। 9:02 ते तुसी सुनोगे फिल्म म्यूजिक बेस्ड प्रोग्राम। 9:30 तुसी सुनोगे गजलां। 10:02 ते समा रहेगा जी प्रोग्राम हालो फरमाइश का। इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकते हो। दिलिए नंबर है जी 0181-3342-173। 11:05 ते प्रोग्राम पेश किया जाएगा तमक जलंधर पैंती। ₹12:05 ते समा रहेगा जी प्रोग्राम वसदे वेड़े का। इस प्रोग्राम च अज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसिस बारे जानकारी दी जाएगी ते नाल दे नाल उडारियां दे तहत सुखदेव कौर होरां नाल गलबात की जाएगी। 1:15 प्रोग्राम पेश किया जाएगा फौजी वीरां लई।

बाद दोपहर 2:30 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। इस च तुसी अज मदन लाल चंचल ते साथियां पासो माता दी भेटां सुनोगे। शाम 4:02 बजे ते तुसी सुनोगे पंजाबी फिल्म संगीत। शाम 4:30 बजे तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शबद कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 बजे तुसी सरवण करोगे गुरुवाणी विचार। शाम 6:30 बजे दिहाती प्रोग्राम पेश कीता जाएगा। इस तुसी काम दियां गल्लां मंडियां दे भाव बारे जानकारी लोगे ते नाल दे नाल नरमे दे कीड़े ते देखभाल बारे डॉक्टर सुनील पंधीर होरा पासो जानकारी सुनोगे। शाम 7:10 बजे ते विशेष कार्यक्रम पेश कीता जाएगा। विशा रहेगा आतंकवाद सिक्योरिटी ते डिफेंस एनालिस्ट। 7:45 बजे ते शाम प्रोग्राम पेश कीता जाएगा इंग्लिश टॉक। इस विशा होगा पावर ऑफ योगा ते इस गलबात ते जानकारी देंगे डॉक्टर कुणाल मेहता। 8:00 बजे प्रोग्राम पेश कीता जाएगा जी जिंदगी हसीन है। 9:15 बजे रात प्रोग्राम पेश कीता जाएगा स्पॉटलाइट ते 9:30 बजे तुसी सुनोगे खेड संसार प्रोग्राम। रात 10:02 बजे पेश कीता जाएगा जी शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम।

0: राम सुर साधना। इस तुसी कलाकार डॉक्टर संतोष नाहर होरा पासू वायलन वादन राग जोग सुनोगे। ते रात 10:30 बजे पेश किया जाएगा सरगम। ऐसी अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले साडे प्रोग्रामा दा वेरवा हुण तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे संस्कृत समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्य अनन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तंत्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र 11 सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
2: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतॄणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखरसम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेण्ड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन्

वेर है वो अपने नाल बहुत सारियाँ पॉजिटिविटी पॉजिटिव एनर्जी अपने नाल लैके आती है, लेकिन सवाल अपने नाल हर एक नवा दिन जड़ा ना वो लैके आता है कि अज का दिन असी किवें बिताना है। बहुत व्डा सवाल जड़ा है ए साडे जिहड़ी दिन है नवा दिन है वो अपने नाल लैके आता है, शिकायतों के नाल बिताना है या फिर शुकराने के नाल बिताना है। क्योंकि दोस्तों जदों असी अख खोलते हाँ एक नवा दिन साढ़े सामने होंगे है, तो अपने आप विच भी ना रब दी एक बहुत वड्डी बख्शिश है। सो जी अज दी शुरुआत जिहड़ी है

अरिजीत सिंह, नेहरा जोशी, देश पांडे दी आवाज़ च तुसी सुन रहे सी। बहुत सोहना जहा गीत ते प्रोग्राम चल रहे जी। सोहनी सवेर दोस्तों, हुण वेला हो चुके एक शुभ विचार दा। कहिंदे ने कि कई वार असी बहुत वार इंसान जड़ा वो सोचदा है कि सफल लोग जड़े ने शायद उन्हां दा राह आसान है, उन्हां नू जिहड़ी सफलता है वो आसानी ना मिल जाती होगी। पर दोस्तों सच्चाई तो है कि उन्होंने औखे राहां ते चलना नहीं कदे भी छड्डिया, तां करके उन्होंने सफलता मिली है। जिंदगी विच हर दिन जड़ा ना वो सानू दो ऑप्शनस दिंदा है, एक बहानिया दा ते दूजा कोशिश करन दा। जिहड़े लोग बहानिया दी थां कोशिशां नू चुनदे ने ना, वो हौली हौली अपनी मंजिल दे नेड़े पहुँच ही जाते हैं। इसलिए शुभ विचार भी अज तक कुछ यही कहता है कि हौली चलना मंजूर हो सकता है पर रुक जाना नहीं। रुकना नहीं है क्योंकि जेकर रुक गए तो फिर असी वांझे रह जावांगे, क्योंकि कहते हैं कि छोटे छोटे जिहड़े कदम ने ना वो एक वड्डियां मंजिलों तक सानू लैके जाते हैं। दोस्तों तो जरूरी यही नहीं कि सिर्फ असी अपने आप से ही भरोसा करना करके, अपने आप ते भरोसा भी दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी, लेकिन उस तो ज़्यादा रब ते भरोसा रखो, इस निरंकार ते भरोसा रखो कि साढ़े नाल वो एक पावर है, वो साढ़े आस पास है जो सानू हिम्मत बख्श रही है, जो सानू सब कुछ करन दा जो है कि वो हिम्मत एक बख्शी जा रही है जिदे करके असी अगे वध रहे हैं अपनी मंजिला दे वाल। ते इसी सोच दे नाल प्रोग्राम सोहनी सवेर च असी अगे वधदे हां ते राहत फतेह अली खान दी आवाज़ च सुनदे हां। इसी गल दे नाल रलदा मिलदा एक गीत।

राहत फतेह अली खान दी आवाज़ तुसी सुन रहे सी, दिल नू छू लैन वाला एक गीत प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों। सोहनी सवेर ते जिवें असी जानते हाँ कि जिहड़ा हर दिन है अपने नाल कुछ ना कुछ खास संदेश लेके आंदा है, ते अज दी तरीक जिहड़ी है वह भी असी जेकर गल करिए 16 जून की, तो 16 जून यानी कि अज के दिन पूरे दुनिया भर च इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेस मनाया जाता है। दोस्तों रिमिटेंस की जेकर असी गल करिए तो यदा मतलब होंगे है कि वो पैसा जो विदेश दूर दहाड़े या फिर असी गल करिए अपने देश की ही, जिमें कि जोड़े प्रवासी ने वो काम करके वो जोड़े लोग ने अपने परिवारों पैसे भेजते हैं। साडे देश जेकर असी गल करिए दोस्तों अनेक लोग अपने घर परिवार तो दूर रह के मेहनत करते हैं, तो अपनी कमाई का जड़ा हिस्सा है वो अपने परिवार दियां लोड़ां पूरियां करन लई घर भेजते हैं पैसा। यह जड़ा पैसा है इस पैसे दे नाल उन्हां दे बच्चों की पढ़ाई हुंदी है, इलाज हुंदा है, घर के खर्चे ते उन्हां दे कई सारे जड़े सुपने ने वो पूरे हुंदे ने। ते ए दिन दोस्तों उन्हां लखां करोड़ां लोगों की मेहनत अते समर्पण नूं सलाम करन लई मनाया जांदा है जो अपने परिवार की बेहतरी लई घर तो दूर रहिंदे ने। संयुक्त राष्ट्र वल्लों भी इस दिन नूं मानता दित्ती गई है, तो हर साल 16 जून नूं ए दिन मनाया जांदा है। तो दोस्तों यह सिर्फ पैसा भेजन तक गल नहीं हैगी, सगों प्यार जिम्मेवारी ते अपने परिवार नाल जुड़े रहन दी भावना भी है। अज दा संदेश यही है दोस्तों कि परिवार भावें किन्ना भी दूर होवे, दिलां दियां जिहड़ियां दूरियां ने ओ कदे जिहड़ियां ने वो दूर नहीं होनी चाहिए। तो लो जी इसी सोहनी सोच के नाल प्रोग्राम सोहनी सवेर च वधदे आं अगे, तो अज दा जिहड़ा दिन है मेहनत नूं

श्रेया घोषाल ते सोना महापता दी आवाज़ च तुसीं इंजॉय कर रहे सी जी गीत प्रोग्राम सोहनी सवेर च। हुण तुहानू जानकारी दिंदे हां मौसम बारे। जी हाँ दोस्तों, IMD वल्लों जिहड़ा है अज पंजाब दे 13 जिलों च आंधी ते तूफान ते बिजली गर्जन की जिहड़ी चेतावनी है वह जारी की गई है। नाल दे नाल जेकर असीं गल करिए पंजाब च बहुत सारे अजिहे इलाके भी ने जिथे कहा जा रहा है कि हल्की जिहड़ी बारिश है वह भी हो सकती है। पर दोस्तों मौसम जिहड़ा ना काफ़ी ज़्यादा इस वेले कन्फ्यूजिंग बनया हुआ है क्योंकि बीते जेकर असी गल करिए दिना ते जिहड़ी बारिश हुई है उन्हें किते ना किते लोगों नूं राहत जरूर दिती है। तापमान च गिरावट जिहड़ी है दर्ज की गई है पर नाल दे नाल इह जिहड़ा हुण आण वाले महीनियां च जिहड़ा मौसम है वह उमस भरिया किते ना किते रहेगा क्योंकि जिहड़ा मॉइस्चर है वह एनवायरमेंट च होएगा ते उहदे करके जिहड़ा है लोगों नूं हल जिहड़ी उमस भरी गर्मी उहदा सामना तो करना ही पवेगा। लेकिन हुण जो IMD वल्लों जिहड़ा अलर्ट जारी किया गया उहदे च कुछ इलाके दसे गए ने जिहदे विच कहा जा रहा है कि बुढलाडा, लहरा, पातड़ा, बटाला, अजनाला, इस दे नाल ही डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर ते पठानकोट दे कुछ इलाके ने जिथे 40 to 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल तेज़ हवावां ते बिजली गर्जन की संभावना जिहड़ी है IMD वल्लों जताई गई है। इस दे नाल ही फजिलका, मुक्सर, फरीदकोट, फिरोजपुर, जीरा पट्टी कुछ ऐ इलाके ने जिथे कहा जा रहा है कि 30 to 40 किलोमीटर दी प्रति घंटे की रफ्तार नाल जिहड़ियां ने हवावां चलनगियां। तो दोस्तों किते ना किते मौसम जिहड़ा है वह इन्हां इलाकियां दे विच बदलदा होवेगा जरूर दिखाई देवेगा। तो हले मौसम विभाग वल्लों यह कहा जा रहा है कि 19 जून तक जिहड़ा मौसम है वह इंजी उस च करवट देखण नूं मिलेगी ते कितना कितने लोगों लई राहत भी है। तो दोस्तों इस दे नाल ही पंजाब च प्री मानसून भी जिहड़ा है उस दस्तक देवेगा। उस तो बाद मानसून आवेगा, चंगी जिहड़ी बारिश है होवेगी ते उहदे विच किवें असीं अपना ख्याल रखना है प्रोग्राम सोहनी सवेर च उस बारे भी तुहानूं जानकारी देवांगे। हुण तुसीं सुनो अरिजीत सिंह ते निकिता गांधी की आवाज़ च इह सोहणा जिहा गीत। उस तो बाद प्रोग्राम सोहनी सवेर च तो हाड़ली शेयर करांगे होर कुछ टिप्स।

अरिजीत सिंह ते निकिता गांधी दी आवाज़ जो तुसी सुन रहे सी दोस्तों, बहुत सोहना जिहा गीत। ते जिवें कि असी तुहानू जानकारी दित्ती सी कि प्री मानसून दैन मानसून दी एंट्री जिहड़ी है ओह होवेगी, ते उन्हां इस दौरान जिहड़ा असी किन्हां गल्लां दा दोस्तों ख्याल रखना है ता कि साडी सेहत जिहड़ी है ए फिट रहे, तो असी इस पूरे मौसम का आनंद भी माण सकी। तो दोस्तों कोशिश करो कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इन्हां दिनां च बाहर का जिहड़ा खाना है, खाना जो भी है उन्हूं अवॉइड करो। इस दे नाल ही इन्हां दिनां च मच्छर भी वधणगे, तो कोशिश करो जी आस पास जिहड़ा कूलर होणगे या फिर गमले होणगे उन्हां च पानी ना जमा होण दईए। नाल दे नाल एमरजेंसी किट जिहड़ी है वह आपां जरूर रखिए, टाइम टू टाइम असी अपने जिहड़ा है वो हाइजीन का भी ध्यान रखना है। तो उबला पानी जिहड़ा है दोस्तों वो पियो, तो ताज़ा फ्रैश एकदम जिहड़ा है वो असी कोशिश करिए कि खाने जिहड़ा उहदा सेवन करिए, क्योंकि मौसम की नमी की वजह नाल दोस्तों बैक्टीरिया तो मच्छर जिहड़े ने पनपते हैं, तो अगों डेंगू मलेरिया तो पेट नाल संबंधी जिहड़ियां बीमारियां ने उन्हां

0: के खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जल मार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत

गर्द कंसोर्टियम या इसका प्रबंधक है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता

0: आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडो को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का

0: आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन, फ्रांस टुडे। to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada.

0: वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। प्रोग्राम महक पंजाबी नू, थोड़ा जा इंतजार होर।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता आरबीआई दे ओम्बड्समैन नू शिकायत करो। आरबीआई कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ई आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम महक पंजाब दी। पंजाबी फिल्म म्यूजिक दे इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं जी, एमी विर्क दा गाया फिल्म सूफना दा ये गीत। लो जी, तुसी भी एंजॉय करो।
5: पिंड ने गुरुद्वारा नहीं बनाया दा सांझा जा रब।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता RBI दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। RBI कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे दोस्तों महक पंजाब दी ते पंजाबी फिल्म म्यूजिक दे इस प्रोग्राम च अगला गीत तुहानू सुनान जा रहा है फिल्म बुर्रा चो युवराज हंस दा गाया गीत। लो जी तुसी भी चुमो इस गीत ते।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर के उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश ने आज दियां मुख खबरां। सलोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सलोवाकिया दे सर्व उच्च सम्मान द अवार्ड ऑफ वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास नाल सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी अज फ्रांस के इवियान विच G7 शिखर सम्मेलन च हिस्सा लैणगे। श्री मोदी कैनेडा अते इंग्लैंड के प्रधानमंत्रियों अते संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति नाल मीटिंगां भी करनगे। सरकार ने डीजल अते हवाबाजी टरबाइन ईंधन ते बरामद ड्यूटी वधाई। पेट्रोल ते बरामद ड्यूटी विच कोई तब्दीली नहीं। सरकार ने उत्तरी रेलवे दे अंबाला डिवीजन लई 201 करोड़ रुपए दे कवच प्रोजेक्ट नूं मंजूरी दित्ती। भारतीय टैक्स दिशा ने 62,370 मीट्रिक टन LNG नाल हॉर्मूज पन जोड़ नूं सुरक्षित ढंग नाल पार कीता। पंजाब विच वोटर सूचियां दी विशेष सोध SIR 2026 तहत घर घर गणना 25 जून तो 24 जुलाई तक होगी। भारतीय फौज की वजर कौर वालों देशवासियों नूं गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब फिरोजपुर च हुसैनी वाला यादगार अते फिरोजपुर के किले दियां जंग प्रभावित कंधा अते पाकिस्तानी टैंकां दे कब्रस्तान वजो जाने जांदे खेमकरण कस्बे विच आसल उताड़ दे दर्शन करन दी अपील। राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमीशन ने रूपनगर जिले विच आवारा कुत्तियां दे हमले कारण 8 साला बच्ची दी मौत होण दा अपने तौर ते नोटिस लैंदिआं पंजाब दे मुख सकत्तर नूं 2 हफ्तिआं अंदर मामले दी वेरवे सहित रिपोर्ट पेश करन लई कहा है। अयोध्या दे राम मंदिर विच दान अते कीमती वस्तां दी दुरवरतों के इल्जामों की जांच लई बनाई गई विशेष जांच टीम ने अपनी जांच शुरू की। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पछमी राजस्थान जम्मू कश्मीर अते लद्दाख के कुछ हिस्सों विच गरज चमक नाल तेज़ हवावां चलन की पेशनगोई की। अज दियां मुख खबरां।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक सवेरे 9:03 हो रहे ने ते हुण वेला हो चुका है जी फिल्म म्यूजिक बेस्ड प्रोग्राम दा। ते इस प्रोग्राम च अज असी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम इस फिल्म बारे तुहानू जानकारी देवांगे ते नाल दे नाल असी तुहानू गीत भी सुनावांगे। दोस्तों हिंदी सिनेमा दी दुनिया विच कुछ फिल्मां एहो जिहियां हुंदियां ने जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करदियां सगों एक डूंगा संदेश भी दे जांदियां ने। अज असी गल करांगे जी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम दी। इस फिल्म दा जिहड़ा निर्देशन है दोस्तों वो कीता सी मशहूर फिल्मकार राज कपूर ने। तो दोस्तों जेकर असी गल करिए इस फिल्म बारे तो फिल्म च बहुत सोहना जिहड़ा संदेश है वो दिता गया सी ते नाल दे नाल इस फिल्म दे जिहड़े गीत सी दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुए सी। ते जेकर असी इस फिल्म दे संदेश की गल करिए या फिर सब तो पहला जानकारी तुहानू देईए सन 1978 च रिलीज़ हुई सी दोस्तों ये फिल्म। तो इस फिल्म का जिवें कि तुहानू दस्या निर्देशन मशहूर फिल्मकार राज कपूर ने किया सी। फिल्म विच शशि कपूर अते जीनत अमान जिहड़े सी वो मुख कलाकारा वजों उन्होंने इस विच जिहड़ा है वो अपना रोल अदा किया। फिल्म सानू दोस्तों यह संदेश दिंदी सी कि असली जिहड़ी सुंदरता है वह चेहरे विच नहीं सगों इंसान दे मन विचारां ते रूह विच हुंदी है। ते इस फिल्म दा गीत जिहड़ा है वह भी बहुत ज़्यादा हिट होया जिहड़ा कि लता मंगेशकर ते साथियां ने गाया। लो सब तो पहला

दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम एक ऐसी फिल्म है जो सानू एक बहुत वड्डा सवाल पूछती है कि असी लोकां नू उहनां दे दिल नाल पछाणने आ या सिर्फ उहनां दे चेहरे नाल। फिल्म दी जिहड़ी नायिका रूपा सी, जिवें कि तुहानू दस्सिया कि उहदे चेहरे ते निशान सी, पर उहदा जिहड़ा दिल सी दोस्तो उह बहुत सोहणा हुंदा है। उत्थे फिल्म सानू इह वी सिखांदी है कि असली सुंदरता इंसान दे विचारां, उहदे सुभाअ ते उहदे रूह 'च हुंदी है। शायद इसीलिए फिल्म का नाम जड़ा है वो भी रखा गया सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि जो सच्चा है वो ही शिव है ते वो ही असल सुंदर है। दोस्तों, अज भावें यह फिल्म कई दहाकियां पुरानी हो चुकी है, पर इहदा जिहड़ा संदेश है वो अज भी उन्ना ही नवा लगता है। अज दे समें च जदों लोक अक्सर बाहरी दिखावे नूं ज़्यादा महत्व दे रहे ने, इंपोर्टेंस दे रहे ने, यह फिल्म सानूं यह याद दवांदी है कि इंसान की पहचान उहदे दिल तो होनी चाहिए, उहदे चरित्र नाल हुंदी है। तो यही गल है जी कि इस फिल्म जिहड़ी यह फिल्म है वो आम प्रेम कहानी तो इस फिल्म नूं वक्खरा बनाती है। तो जाते जाते आओ सुनते हैं इसे खूबसूरत संदेश के नाल इस फिल्म दा एक होर सदा बहार की।

हुने तुसी सुनिया फिल्म म्यूजिक बेस्ड प्रोग्राम सत्यम शिवम सुंदरम इस फिल्म दे गीत मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़

नमस्कार दोस्तों, दिन दा वेला होवे या शाम दा समा होवे या रात दा कोई खामोश पल, कुछ एहसास ऐसे हुंदे ने जो सिर्फ गजलां ही बयान कर सकदियां ने। अल्फाजा दी नज़ाकत, जज्बातां दी गहराई ते दिल दियां अनकईयां गल्लां नूं अपने अंदर समेटे अज दी इस खूबसूरत महफिल च तुहाडा स्वागत है। मैं तुहाडी दोस्त शुभिता, ते अगले कुछ पलां तक असी इकट्ठे करांगे जी गज़लां दी इस सोहणे जे सफर नूं तय, जिथे हर शेर हर एक गज़ल एक एहसास बन के दिल तक पहुँचेगा। ते आओ इस महफिल दी शुरुआत करदे हां गज़लां दे बादशाह जगजीत सिंह जी दी एक बेहद खूबसूरत पेशकश दे नाल।

वाह दोस्तों, कई बारी दिल ओ गल्ला कह जाता है जो लफ्ज़ कदे नहीं बयां कर सकते, ते लफ्ज़ां विच कहना आसान नहीं हुंदा। दिल दी जिहड़ी आवाज़ है वह भी कमाल दी हुंदी है, ना कोई शोर ना कोई जिद, पर फिर भी सीधी रूह तक पहुँच जाती है। ते जगजीत सिंह जी दी जिहड़ी आवाज़ है जदों ऐसे एहसासां नूं छू लैंदी है तां गज़ल सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। चलो जी, इसी खूबसूरत एहसास के नाल अगे वधदे हां ते सुनदे हां एक होर दिल नशीन गज़ल।

वाह दोस्तों, मेहदी हसन साहब की आवाज़ का जादू भी कुछ ऐसा है कि हर शेर सीधा दिल च उतर जाता है। गज़ल सानू याद दवाती है कि मोहब्बत सिर्फ पाउण दा नाम नहीं, सगों किसी नू दिलों महसूस करन दा नाम भी है। दोस्तों, कई बारी दिल विच उठन वालियां लहरां दा कोई नाम नहीं हुंदा, ना उना दा कोई पता हुंदा है, ना कोई वजह। बस एक एहसास हुंदा है जो खामोशी नाल दिल दे दरवाजे ते दस्तक दे जांदा है। ते जदों ऐसे एहसासां नू अल्फाज मिल जान ते उना अल्फाजां नू गुलाम अली साहब दी आवाज़ मिल जावे ता गज़ल एक वक्री ही रंगत लै लैंदी है। ते आओ जी सुनदे हां गज़लां दे इस महफिल दी आखरी गज़ल, गुलाम अली साहब दी आवाज़ विच बेहद खूबसूरत गज़ल, तुसी भी सुनो।

लता मंगेशकर दी आवाज़ तुसी सुन रहे सी फिल्म महबूबा दा एक गीत। प्रोग्राम चल रहे जी हैलो फरमाइश, आओ जानते हैं इस प्रोग्राम च अगली फरमाइश केड़े कॉलर तुस लेके आए ने। हैलो हैलो, शायद एक बार फिर तो किसी टेक्निकल एरर दी वजह नाल जिहड़ा कॉल है वो डिसकनैक्ट हो गया है, लेकिन कोई गल नहीं जी, कोशिश असी करते रहेंगे तुहाडे नाल जुड़न दी। फिलहाल हुन इस प्रोग्राम च अगला गीत सुनान जा रहे हैं जी, फिल्म आदमी सड़क का, इस चों मुहम्मद रफ़ी दा गाया गीत जड़ा है वो तुसी भी सुनो ते प्रोग्राम हालो फरमाइश तुसी साडे नाल कनैक्ट कर सकते हो। दिलिए 0181 43 143 नंबर डायल करो, कोशिश करो, असी भी इतों कोशिश कर रहे हैं पूरी तुहाडियां कॉल्स अटेंड करन दी, ते तुसी भी ट्राई करते रहो। फिलहाल मुहम्मद रफ़ी दा गाया गीत सुनो।

लता मंगेशकर दी आवाज़ चो फिल्म चांदनी दा है गीत तुसी इंजॉय कर रहे सी। प्रोग्राम चल रहा है हेलो फरमाइश। आओ जानते हैं कि अगली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हेलो हेलो,

बार फिर तो कुछ टेक्निकल एरर करके शायद कॉल नहीं लग रही है, लेकिन ऑन एयर नहीं पर उसी लाइव नहीं लेकिन ऑफ एयर तो हड्डियाँ जिहड़ियाँ फरमाइशा ने वो जरूर साढ़े तक पहुँच रही ने, तो जिहड़ी असुविधा हो रही उहदे लई असी माफ़ी चाहवांगे। तो अगला गीत हुण इस फिल्म जिहड़ी है वो असी तुहानू सुनाउण जा रहे हैं जी, फिल्म है जी हाथी मेरा साथी, जो किशोर कुमार का गाया गीत, तुसी भी इंजॉय करो।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

महेंद्र कपूर ते आशा भोसले दी आवाज़ से तुसे सुन रहे सी जे गीत प्रोग्राम चल रहा है। हेलो फरमाइश ते आओ एक बार फिर तो कोशिश करते हैं ते देखते हैं कि केड़े कॉलर साढ़े नाल जुड़े ने। हैलो हैलो नहीं एक बार फिर तो कॉल जड़ी है नहीं कनेक्ट हो पाई, लेकिन कोई गल नहीं जी। हुण इस प्रोग्राम च अगला गीत असी तुहानू सुनाउण जा रहे हैं जी फिल्म प्यार ही प्यार चो मुहम्मद रफ़ी का गाया गीत। लो जी तुसी भी इंजॉय करो इस सोहना जिहा गीत।

मोहम्मद रफ़ी दी आवाज़ च तुसी सुन रहे सी जी, बहुत सोहना जिहा गीत फिल्म प्यार ही प्यार चो। ते प्रोग्राम हलो फरमाइश, हुन अगला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं जी, बॉम्बे फिल्म चो चित्रा दा गाया गीत। ये भी बहुत दिल नू छू लेन वाला गीत है, लो जी इंजॉय करो।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे जी हैलो फरमाइश, तो इस प्रोग्राम च अगला गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ च फिल्म दोस्ती चो। सन 1964 च फिल्म आई, तो इस फिल्म के सारे ही गीत वैसे तो बहुत सोहने से, जोड़ा गीत सुना जा रहे हैं वह भी बहुत सोहना है। लो जी इंजॉय करो।
1: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना कोई,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के

0: सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में बढ़ोतरी की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमानन ईंधन के निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। इस बीच LNG ले जा रहे भारतीय टैंकर दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। इसमें 62,370 मीट्रिक टन LNG है। इसके 18 जून तक गुजरात के दहेज पत्तन पर पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। फीफा विश्व कप में केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए दिग्गज टीम स्पेन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 11:05 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜ ਦਿਉ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 9465536077, ਯਾਨੀ ਕਿ 9465536077। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਵੀਨਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ।

रंग बिरंगे गीत असी सुन रहे हैं प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी दे विच ते अगली फरमाइश पढ़न जा रही हैं। ये फरमाइश सानू आई है जी श्री फतेहगढ़ साहब तो ते फरमाइश भेजन वाले ने रामनाथ अतापुरी सुखमनजीत सिंह सहजप्रीत कौर ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। अगली जिहड़ी फरमाइश आई है जी सानू वो फरमाइश आई है जी गुरु रामदास कलोनी गुरदासपुर तो ते फरमाइश भेजन वाले ने प्रीतम दास अंगुराना सत्या देवी अंगुराना पोतरी वानिया ते पोते अरमान वालों फरमाइश है जी अविराज कनेडा ते काका देवयंक अंगुराना ते पूरी अंगुराना फैमिली फरमाइश कर रही है। इन्हां नूं कंठ कलेर की आवाज़ में गीत सुनना चाहते हैं तो कंठ कलेर की आवाज़ में ही फिर गीत सुनना चाहते हैं। पिंड बाजीदमपुर पोमा तो बलजीत सिंह बलदेव सिंह पेंचरां वाला वड़िंग खेड़ा तो भोला सिंह ते बहुत ज़्यादा उन्हें साथी उन्होंने ना ये भी शिकायत की थी कि एक हफ्ते तो ये सानू फरमाए भेज रहे मैसेज इन्हों का नाम नहीं पढ़ते पे पर नहीं इदा की कोई गल नहीं देखो असी तुहाड़ा नाम पढ़ दिता बहुत सोहनी तरह तुहाड़ा नाम पढ़िया हुण लगता तुहाडी शिकायत दूर हो गई होनी आ। तो अगली फरमाइश सानू आई जी शेरपुर थाना जिला संगरूर तो फरमाइश भेजिए मिंटू संपल अमनजोत सिंह संपल बिंदर खेड़ी परमजीत सिंह पुरबा तुरी हुरा वालों। अगली फरमाइश आई है जी सानू चकलां बाजार समाना तो ये फरमाइश सानू आई है जी पप्पू राजा खुशदिल संगीता राणी जिंदल पप्पू समाइल खुशदिल हसमुख लाल जिंदल संजीव सुनीता बंटी जिंदल आरजू महक खुशदिल पूरा खुशदिल परिवार फरमाइश कर रहा है। तो बहुत सारे गुलाब के फुल इन्होंने हमेशा की तरह अपने मैसेज के नाल सानू भेजे ने। अगली जिहड़ी फरमाइश आई है जी फाजिलका पंजाब तो फरमाइश भेजने वाले ने पूछन खेड़ा विशु खेड़ा लाडी खेड़ा विशाल खेड़ा शालिनी खेड़ा टिवानशी खेड़ा तो उन्होंने बहुत सारे साथी सेम गीत की फरमाइश कर रहे हैं। अगली बाजार च अगली जिहड़ी फरमाइश आई है जी सानू मेन बाजार शेरपुरा तो भेजन वाले ने फरमाइश इंजीनियर अमनजोत सिंह इंजीनियर रमनजोत सिंह ते मिंटू होरी ते इन्हां दी फरमाइश पूरी करदे हां ते आओ सुनदे हां आपां सारे कंठ कलेर दी आवाज़ विच एक गीत।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: ਹੁਣ ਫੋਲਾਂ ਕੀ ਖੋਇਆ ਕੀ ਪਾਇਆ
0: ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3:12 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। फ्रांस के एविया शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा

0: परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्रों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियावेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। दिन दे 12 वज रहे ने, 12:05 वज चुके ने। आओ हुण सुणदे हां पारिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार। प्रोग्राम वजवड़े लैके प्रभजोत हाजिर है।
1: ते प्रभजोत जी दे नाल नाल अलका भी हाजिर है
0: जी। अलका की हाल चाल ने?
1: हाल ते बहुत वधिया है
0: जी।
1: अज जेड़ा हुन कल दा थोड़ा जा मौसम ठीक हो गया ओदे नाल सानू बहुत वधिया लग रहा सब नू, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी सी, लू लगन दा डर सी, और घरों बाहर निकलदे सी तां त्वचा जेड़ी साडी जेड़ी स्किन है ओ जलन लग पैंदी सी।
0: बिल्कुल जी, चमड़ी जड़ी है उस दे काफ़ी सारे प्रभाव पै रहे सी लू दे। पर गल ए आई, मैनू लग रहा है कि अलका तुसी सुते ही नहीं हो।
1: नहीं, किस करके लग गया
0: देखो
1: थानू?
0: जी, तो मैनू लग रहा है थोड़ी अखां तो कि तुसी बिल्कुल नहीं सो के आए। देखो जी, असी कल भी गल कीती है कि योग करया करो, योग करन दे नाल चंगी नींदर जड़ी है ओ आंदी है
1: बिल्कुल, तुसी
0: ना?
1: सही किया कि अजकल ना जदों असी रात नू लेटदे हां ते किन्नी किन्नी देर तक असी फोन चलांदे रहने
0: जी
1: हां,
0: बिल्कुल।
1: फिर फोन चलांदे चलांदे पता नहीं कदों नींद आ जांदी है, और सवेरे अपने टाइम दे नाल जाग तां खुल जांदी आ पर नींद पूरी नहीं हुंदी।
0: बिल्कुल ऐसे ही तरह ही तुहाडे नाल होया। और देखो, असी कल भी ये गल कीती है कि योग जिहड़ा है वह हर तरह दे विच सहाई हुंदा है।
1: हाँ जी,
0: जे वो मानसिक रोग ने उन्हां नूं भी ठीक करदा है, पर इस वास्ते सानू थोड़ा जा योग दे जिहड़े आसन ने वह सीखने पैणगे। और देखो, योग असी किसी भी वेले कर सकते हैं। ये नहीं है कि असी सवेरे ही करना है, घर च सवाणियाँ काम करके भी कर सकदी हैं, दोपहर नू कर लो, शाम नू कर लो। और जिहड़ी ये आपां गल कर रही हैं कि सेहतमंद नींद लई योग जिहड़ा वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखो, जे सेहतमंद नींद होएगी तुहाडी, तुसी चंगी तरह सोवोंगे, फिर तुसी सवेरे फ्रेश उठोगे और तुहाडा दिमाग जिहड़ा वो बिल्कुल फ्रेश होएगा
1: और दूसरी गल ये भी है कि जिन्ना मर्जी असी मेकअप कर लिए तैयार हो जाइए पर
0: जी।
1: साड़ियाँ जड़ियाँ अखा ने साडा चेहरा वो दस दिंदा कि असी प्रॉपर नींद जड़ी नहीं लिती हुई। और
0: बिल्कुल।
1: योग दे नाल नाल साड़ी जड़ियाँ मांसपेशियां ने, साडे दिमाग दियाँ मांसपेशियां ने वो भी फ्लैक्सीबल होंदियाँ, साडा पूरा जिहड़ा बॉडी स्ट्रक्चर आ उहनूं भी फर्क पैंदा,
0: जी
1: क्योंकि जिहड़ियां साडियां अजकल नसां वीक होण लग पईआं, नसां दे विच खून जम जांदा ते सानूं डॉक्टर्स दसदे आ कि तुसीं थैरेपी कराओ या इंजैक्शन लगवाओ,
0: बिल्कुल।
1: उहदे नालों बेहतर इह है कि असीं अपने शरीर नूं योग नाल निरोग कर लईए,
0: बिल्कुल,
1: है
0: बहुत
1: ना?
0: वधिया गल कही जी कि योग दे नाल असी निरोग कर लिए।

0: डे है आज जिहड़ा खास दिन है, और देखो ये खास दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है
1: जी
0: उन्हां लोकां वास्ते जिहड़े के बाहर गए हुए ने और बाहरों सानू पैसा भेज रहे ने।
1: या फिर दूसरे शहरों तो साढ़े पंजाब दे विच आ के या पंजाब तो दूसरे शहरों दे विच जा के भी काम
0: जी
1: करते ने, वो भी अपने घरों नूं पैसे भेजते ने। उन्हां दा मंतव सिर्फ पैसा भेजना नहीं हुंदा, बल्कि अपने परिवार नूं एक आर्थिक मदद देना या बच्चों की पढ़ाई वास्ते खर्चा करना
0: जी
1: या फिर उन्हां दी देखरेख करना।
0: जी
1: एक परिवार दा प्यार या जिन्हों कह लो कि असी एक दूसरे की सांझ कह लो,
0: हाँ
1: है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल। और देखो ए पैसा भेजना सिर्फ तुसी गल बिल्कुल ठीक कीती
1: हाँ
0: है
1: जी
0: और जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछे जड़े परिवार ने उन्हां दी मदद करनी उन्हां दा फर्ज बन जाता है।
1: और जिहड़े बाहरों विदेशों तो पैसा भेजते ने
0: जी
1: उहदे नाल साडे देश की जिहड़ी है वो आर्थिक तौर ते साडा जिहड़ा देश है मजबूत हुंदा है। वो भी बच्चे अपने घरदिआं नूं पैसा कमा के, पता नहीं किन्नी कु बच्चे मेहनत करदे ने विदेशां च
0: जी
1: जा के या दूजे शहरां च जा के अपने परिवार वास्ते अपने देश वास्ते खून पसीना एक करदे ने, दिन रात मेहनत करदे ने ताँ कि वो अपने घरदिआं नूं हर तर्हां दी जिहड़ी है
0: मदद
1: ज़रूरी
0: कर,
1: मदद कर सकन।
0: बिल्कुल जी। और इसे करके सानू सारयां नू जिहड़े साडे प्रवासी भैन भरा ने उन्हां दा सत्कार करना चाहिदा, अपने परिवारां दी खुशहाली ते अपने देश दे विकास लई, क्योंकि वो महत्वपूर्ण योगदान पा रहे ने। इस करके सानू बनदा है कि अज दा दिन जिहड़ा असी मना रहे हां ये उन्हां दे सत्कार वजों ही मनाया जा रहा है ना।
1: ते उन्हां दा असीं धन्नवाद भी करदे हां
0: जी
1: कि
0: बिल्कुल
1: जिहड़े बच्चे इन्ने समझदार ने अपने परिवारां वास्ते इन्नी मददगार साबित हुंदे
0: जी
1: ने।
0: बिल्कुल। ते फिर एक गीत सुन ली पहला
1: जी
0: जी।

0: लो जी, गीत भी सुन लिया ते फिर हाजर अपना प्रोग्राम लैके वसदे वेड़े। जी
1: जी तो असी वधदे आ अपने पहले सैगमेंट वल। ते अज दा साडा जिहड़ा सिलसिला है ओह है उडारियां।
0: जी
1: ते इस विच असी गलबात कीती है सुखदेव कौर होरां नाल। ते इन्हां नाल गलबात कीती है प्रभजोत जी, तुसी ही गल कीती
0: बिल्कुल।
1: है इन्हां नाल। ते इन्हां ने अपने जीवन विच की उडारियां मारियां,
0: जी
1: की काम कीते, ते किद्दां इन्हां ने इत्थे तक पहुंचे ने। ते
0: जी
1: आओ सुनदे हैं सारियां गल्लां बातां प्रोग्राम उडारियां दे तहत।
0: उडारिया प्रोग्राम च अज असी जिस दी उडारी मापनी है उन्होंने पंजाबी विरासत पंजाबी सभ्याचार नू संभाल के रखे होया है, वो ने सुखदेव कौर। सुखदेव कौर जी सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते ने, मैं क्या कि पंजाबी सभ्याचार नू संभाल के रखे होया है, यानी कि पंजाब दी मशहूर जड़ी के फुल जमाकारी तो बनती है फुलकारी, जड़ी कि पंजाब राज दी लोक कला भी है, उस चीज़ नू उन्होंने संभाल के रखे है, यानी कि फुलकारी। फुलकारी नू जे असी कहिए तां वो रंग बिरंगे धाग्यां दे नाल वक्रे वक्रे डिजाइना दे नाल फुलकारी कढ़दे ने, ते इन्हां तो ही जानदे हाँ कि ये किस तरह ये सब कुछ सोचते ने कि ये फुलकारी दे उत्ते रंग बिरंगे धाग्या दे नाल कुछ ना कुछ डिजाइन जड़ी है वो पा देंदे ने। आओ इन्हां दा स्वागत करदे हाँ ते इन्हां नाल ही इन्हां दे सफर दी शुरुआत करदे हाँ, इन्हां दे नाल गलबात करदे हाँ। बहुत बहुत स्वागत है सुखदेव कौर जी साडे स्टूडियोज दे विच।
2: मैम थोनू सत श्रीकाल बुलाउनी
0: जी
2: है।
0: सत श्री अकाल जी।
2: हाँ जी,
0: सब तो पहला तो यही जानना चाहवांगे कि तुहाडा पिछोकड़ कित्थों दा है।
2: हाँ जी, पिछे मेरे जेडे पेका घर आ वो पिंड च बड़ियां झल्लियां,
0: जी
2: वो भी रोपड़ जिले च ही है, ते जो मेरे सहुरा परिवार है पिंड भूर माजरा ते नेड़े चमकौर साहब, वो भी रोपड़ जिले विच ही है।
0: जी फुलकारी दा शौक जिहड़ा है वो बचपन तो सी, जां फिर के सहुरे परिवार आ के पिया, कि जां फिर तुसी किसी नूं कढ़दे होए देख्या।
2: हाँ जी, ये शौक तो पहला तो ही सीगा, अपने पेके घर तो ही
0: जी
2: मैं शौक सीगा मैनू ये कढ़ण दा। मैं अपने शादी दे विच भी जदों मेरी मैरिज हुई है उदों भी मैं बना के लियाई सी चार पंज फुलकारियाँ
0: अच्छा
2: शौक वजों, पर इत्थे आ के मेरी ये मजबूरी बन गई सी सहुरे परिवार च आ
0: जी
2: के।
0: मजबूरी तुसी क्या, पर ये मजबूरी किस तरह दी सी?
2: मजबूरी है तो थोनू पता ही है, जदों आपां इक

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜਣ ਵਾਲਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा

को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेट्टेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी नुमाइश की सताइश की है और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में आर्ट और कल्चर के रोल पर जोर दिया है। सरकार ने नीट UG के दोबारा इम्तिहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक पाबंदी आयद की है, जबकि मैसेज एडिट करने की सहूलत 30 जून तक मौतल रहेगी। खांसी की रोकथाम के सिर्फ लाइसेंस वाले दवा फरोश ही फरोख्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर मरकज और रियासतों से जवाब तलब किए हैं जिसमें आधार को सिर्फ शिनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की गई है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सिर्फ गैर मुस्तकिल सीटों की तौसी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और इस तरह की असलाहत को नाकामी के मुतरादिफ करार दिया है। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत जापान को 1-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दो रोज़ा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियान पहुंच रहे हैं, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। ये कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई है। जनाब मोदी स्लोवाकिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद फ्रांस रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार 7वीं मरतबा शिरकत करेंगे, जबकि इस अहम कसीर जहती इजलास में भारत 13वीं बार शिरकत कर रहा है। G7 की यह सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इस कॉन्फ्रेंस में आलमी खित्ते जनूब की आवाज़ और तशवीश को ज़ोरदार तरीके से उजागर करेंगे। आज शाम वहां पहुंचने पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों वज़ीर-ए-आज़म का बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है नई शराकत दारियों का क़याम और बैनुल अक़वामी इत्तेहाद की अज़सर नौ तश्कील। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकत दार ममालिक के नुमाइंदे, नीज़ आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कैनेडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दो तरफा मीटिंगें भी मुतवक्के हैं। इसके बाद जनाब मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियतों में से एक अहम मसरूफियत कल अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात है। तवक्को है दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन के बारे में तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर कल शाम पेरिस पहुंचेंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर-ए-आज़म जुमरात की सुबह सरकर्दा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। बाद में वो यूरोप की सरकर्दा टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी से मुतालिक प्रोग्रामों में से एक वीवाटेक समिट में हिस्सा लेंगे। तवक्को है कि वो समिट से खिताब भी करेंगे। शाम में वज़ीर-ए-आज़म एक कम्युनिटी तकरीब में शिरकत करेंगे और वहाँ आबाद भारत निजात अफराद से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम भी होंगे, जिसमें भारत की शानदार विरासत की झलक पेश की जाएगी और भारत फ्रांस के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को उजागर किया जाएगा। पेरिस से महेश चोपड़ा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फन और सकाफत में लोगों को एक दूसरे के करीब

लाने की ताकत होती है। उन्होंने ये बात स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलिग्रिनी के साथ कल स्लोवाकिया के शहर ब्रातिस्लावा में सदारती महल में स्लोवाकिया के फनकारों के शाहकारों समेत वाराणसी से मुतालिक नुमाइश देखने के बाद कही। इस ब्रातिस्लावा में बनारस की एक झलक करार देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने स्लोवाकिया के फनकारों की जानिब से वाराणसी से मुतालिक तख्लीकी पेशकश को सराहा। वज़ारत खारजा ने कहा है कि ये नुमाइश वाराणसी शहर के लिए वक्फ थी, जिसमें रूहानी, सकाफती और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को होने वाला है और इससे कबल सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर इस महीने की 22 तारीख तक बंदिशें आयद की हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने एक महदूद मुद्दत के लिए भारत में टेलीग्राम तक रसाई को महदूद करने के सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की हिदायत का खैर मकदम किया है। एक बयान में इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि ये बंदिशें नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के दिन और उसके अगले रोज तक नाफिज रहेंगी। मजकूरा प्लेटफॉर्म को यह हिदायत भी दी गई है कि वो इस महीने की 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सहूलत को गैर फ़ाल बनाए। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सहूलत शुरू होने के 24 घंटे के अंदर ही 10 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। एजेंसी ने कहा है कि उसकी टीमें सभी उम्मीदवारों के लिए बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाने की खातिर सर्वर पर लोड की लगातार निगरानी कर रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खांसी की रोकथाम के सिरप लाइसेंस वाले दवा फरोशी फरोख्त करेंगे। सरकार ने 1945 के अद्वियात से मुतालिक जाब्तों में तरमीम को नोटिफाई किया है। इसके तहत छोटे गांवों में खांसी की रोकथाम के सिरप की फरोख्त के लिए दी गई रियायत को वापस ले लिया गया है। अब छोटे गांवों में भी इस तरह के सिरप की फरोख्त लाइसेंस वाले दवा फरोशी कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर मरकज़ और रियासतों से जवाब तलब किया है जिसमें शहरियत, आबाई मकाम और रिहायशी पते के सबूत के तौर पर आधार कार्ड के मुबैना बेजा इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया है। मज़कूरा दरख्वास्त में ये हिदायत देने की अपील की गई है कि इसके इस्तेमाल को सिर्फ शिनाख्त की तस्दीक तक महदूद रखा जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहाना पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकज़ और सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को नोटिस जारी किए हैं। मज़कूरा दरख्वास्त में ये दलील दी गई है कि फॉर्म 6 के तहत तस्दीक का मौजूदा तरीक़ेकार नाकाफ़ी है और इसका सहारा लेकर लोग मुनासिब और मुतालिक दस्तावेजात के बग़ैर चुनाव डेटाबेस में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में गुज़श्ता दहाई के दौरान बुनियादी ढांचे को रिकॉर्ड सतह पर जदीद तर्ज पर ढाला गया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर MyGOV की एक पोस्ट शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत के नज़रिए को हकीकत की शक्ल देने की खातिर मुल्क के लोगों के लिए नए सिलसिले का बुनियादी ढांचा तामीर करने की पाबंद है। भारत ने खबरदार किया है कि अगर अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रुकनियत में तौसी सिर्फ गैर मुस्तकिल मेंबर मुल्कों तक महदूद रखी गई तो सलामती कौंसिल में इस्लाहात की कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे हरीश पर्व थानैनी ने यह बात सलामती कौंसिल इस्लाहात से मुतालिक बैन हुकूमती मुज़ाकरात की मीटिंग से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर तौसी सिर्फ गैर मुस्तकिल ज़ुमरे तक महदूद रहती है तो सलामती कौंसिल की इस्लाहात निहायत नाकाफ़ी साबित होंगी और अमलन नाकामी के मुतरादिफ होंगी। ख्वातीन हॉकी में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में भारत FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय ख्वातीन ने पूल ए के अपने दूसरे मैच में जापान को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत 6 पॉइंट के साथ पूल ए में सरे फहरिस्त आ गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कैप वर्दे ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए आलमी सतह पर मजबूत टीम स्पेन के साथ मैच ड्रॉ पर ख़त्म किया और कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। कैप वर्दे के 40 साल गोलकीपर वोजिन्हा ने हरीफ टीम की तरफ से किए गए कई गोल बचाकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के शहर एवियान में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी नुमाइश की सताइश की है और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में आर्ट और कल्चर के रोल पर जोर दिया है।

0: सरकार ने नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक पाबंदी आयद की है, जबकि मैसेज एडिट करने की सहूलत 30 जून तक मुअत्तल रहेगी। खांसी की रोकथाम के सिरप लाइसेंस वाले दवा फरोश ही फरोख्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर मरकज और रियासतों से जवाब तलब किए हैं जिसमें आधार को सिर्फ शिनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की गई है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सिर्फ गैर मुस्तकिल सीटों की तौसी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और इस तरह की असलाहत को नाकामी के मुतरादिफ करार दिया है। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत जापान को के मुकाबले 2 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार तो बाद एक बार फिर तो हाजिर हाँ प्रोग्राम लेके फौजी वीरा ली प्रोग्राम अगे तोड़ दिया ते आओ सुन दिया प्रोग्राम दा अगला गीत।

0: मजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
2: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपने वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफ़ी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
1: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
2: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी।

0: के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
2: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार

0: का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर माईगोव की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब वक्त है कार्यक्रम किसान की बात।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 2:30 बज रहे ने, आओ सुनते हैं प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम च मदन लाल चंचल ते साथियों कोलों तुसी माता दियां पेटां सुनोगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैण लई 2 दिना दौरे ते अज फ्रांस दे इवियान पहुंचणगे। श्री मोदी ने कहा है कि पिछले दहाके देश भर विच बुनियादी ढांचे च रिकॉर्ड सुधार होया है। 21 जून नूं होण वाली नीट UG 2026 दी मुड़ प्रीख्या दे मद्देनज़र सरकार ने 22 जून तक टैलीग्राम ऐप राही ऑनलाइन संदेश भेजन ते रोक ला दित्ती है। सुप्रीम कोर्ट ने अज केंद्र अते राज्यां तों उस पटीशन ते जवाब मंगया है जिस विच कहा गया है कि नागरिकता निवास अते रिहायशी पते दे सबूत वजों आधार कार्ड दी दुरवरतों हो रही है। भारत ने चेतावनी दित्ती है कि जेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दा विस्तार सिर्फ गैर स्थाई मैंबरशिप तक सीमित रहिंदा है तां इस विच सुधार दीआं कोशिशां नाकाम हो सकदीआं ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने दवाइयां संबंधी नेम 1945 विच सोध करदिआं डाक्टरां दी पर्ची तों बिना मैडिकल स्टोरां वल्लों कफ सिरप दी विक्री ते पाबंदी लगा दित्ती है। पंजाब सरकार वल्लों बजुर्गां दीआं भलाई सुरक्षा अते सन्मान नूं यकीनी बनाउण लई बिरध घरां नूं मजबूत करन अते सुरक्षा तंत्र नूं होर प्रभावशाली बनाउण लई लगातार ठोस कदम चुके जा रहे ने। कपूरथला स्थित पुष्पा गुजराल साइंस सिटी ने कुदरत फोटोग्राफी दिवस के मौके पर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया है। भारत न्यूजीलैंड हो रहे महिला FIH हॉकी नेशनस कप के सैमीफाइनल पहुँच गया है। अज सवेरे फाजिलका मानसा और हुशियारपुर समेत होरना कई थावां मीह पैण नाल लोगों को गर्मी तो कुछ राहत मिली है।

0: जिंदल, हसमुख जिंदल ते पूरा ही खुशदिल परिवार, पूरा ही खुशदिल परिवार। ते इन्हां सारिआं नूं सानूं क्या है जी, सानूं दिल जी दी सांझ कोई भी गीत सुना दिता जावे। लो जी, इन्हां दी रली मिली फरमाइश ते पेश है दिल जी दी आवाज़ च ये गीत।
1: Honey sing, the next level.

प्रोग्राम चल रहा चिट्ठियां मिठियां, तो तुसी भी अपनियां चिट्ठियां फरमाइशी पंजाबी गीतां दी चिट्ठियां साढ़े तक पहुँचा सकते हो। आप भी सुनो, अपने रिश्तेदारों को सुनाओ, अपने आंढ़ियां गुआंढ़ियों को भी सुनाओ जिन्हां ते तुसी नाम लिख के भेज देना उन्होंने को, तुसी आप भी चिट्ठियां पाया करो प्रोग्राम दे विच। तुहानूं सब नूं पता है जी, दोपहर दे 3 बजे तो लैके 4 बजे तक चिट्ठियां मिठियां प्रोग्राम आंदा है, तो उहदे विच असीं तुहाडी फरमाइशी पंजाबी गीतां नूं सुणांदे आ। साडा पता नोट कर लो, प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां मारफत स्टेशन डायरैक्टर आकाशवाणी जलंधर, पिन कोड है जी 144001। इस दे नाल ही साढ़े कोल अगलियां चिट्ठियां आईयां है जी। चौधरी मार्केट अबोहर रोड मलोट तो कप्तान सिंह, सैकटरी शमशीर सिंह, जगतार गिल, धर्मिंदर शर्मा, टालीवाला जट्टा तो साहिबजीत सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर, हरजिंदर, गिद्दड़बाहा तो मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो हरजिंदर सिंह, जसवीर रेखा, हरजिंदर शिंदा, जसवीर रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता लिख रहे ने। गगड़ नेरे हाजीपुर तो कहर सिंह, चितराम, मोहन, गुरमेल ते बाकी सारे गगड़ वाले, ते इना सारियां दी रली मुली फरमाइश ते साडे स्रोतियां दी फरमाइश ते तुहानू सुनाण जा रहे हां सी सतिंदर सरताज दी आवाज़ च ये गीत।

स्टार्ट मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा रितिक प्रतीक मल्होत्रा जयवीर सिंह ठाकुर डॉक्टर अमनदीप अनिल शर्मा कालका तो शुभ चंद्र बजाज बिट्टा बजाज तिसाहिल खुरजा उत्तर प्रदेश चो तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा अंकुश अरोड़ा मंडी हरजी राम मलोट तो महेश गर्ग सुषमा गर्ग जशन गर्ग ते विनोद गर्ग ते इना सारियां साडे स्रोतियां दी रली मिली फरमाइश ते तुहानू सुनाण जा रहे हां असीं गुरु रंधावा दी।

परमजीत कौर सोलंकी, विष्णु देव सोलंकी, राजवीर सोलंकी, रमन राठौर, जस्सू पवार, जगवीर सोलंकी ते पूरा सोलंकी परिवार। अगली चिट्ठी लिखिया जी, रिश्ते बने रहे इतना ही बहुत है, सब हंसते रहे इतना ही बहुत है। तो ये संदेश सानू भेजे है जी पंचकूला सैक्टर 9 तो आशु चुग होना ने। तो असी भी खुश होंगे जो ताड़ियाँ चिट्ठिया देखते हैं असी, तो तुसी भी खुश होंगे हो जो चिट्ठिया दे विच तुहाडा नाम पता ते तुहाडा फरमाइशी गीत सुनाया जाता, तुसी भी बहुत खुश होंगे होगे। तो इन्हां दे नाल जिहड़े आशु चुग दे नाल चिट्ठी कौन लिख रहे होर, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भावीक डिंगरा। तो इन्हां सारियां दी रली मिली फरमाइश ते तुहानू सुनाउण जा रहे हां जॉर्डन संधू दी आवाज़ च ये गीत।

0: जदू जदू भी बने रे भोले का मैनू तेरे सोवे मेरे सजना।
1: जी प्रोग्राम दा आखरी गीत सुनान जा रहे हैं फिल्म लौंग लाची चो लिया गया, आवाज़ां एमी विर्क ते मन्नत नूर दियां।

सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माह मिटावो। ये फरमान गौड़ी सुखमणी महला पंजवां बाणी विच्चों है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने कि मैं सदा उस अकाल पुरख प्रभु नूं सिमर सिमर के उसनूं चेते करके सुख प्राप्त कर लिया है, ते मेरे मन अंतर विच्चों सारे दुख कलेश निवृत्त हो गए हन। उस प्रभु दा सिमरन कीतिया दुख पलायन कर जांदे हन। उन्हां प्राणियां नूं जमां दा दुख नहीं सतौंदा। प्रभु दा सिमरन करन वालियां दे नज़दीक किसे प्रकार दा डर नहीं आउंदा। प्रभु दा सिमरन करन वालियां नूं कदे कोई दुख नहीं सतौंदा। इसे करके प्रभु दे प्यारे जन अपने मन अंतर दे विच उस प्रभु दा नाम सिमरदे हन, उसनूं चेते करदे हन। हर जन सिमरो हिरदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवे, पूरन दास के काम। सर्वन कर दे।

0: हर जन सिमरह हृदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम। इस शब्द अगायन कीता सी पाई कमलजीत सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बचित्तर सिंह।
1: जत श्री महला पंजवां, हर जन सिमरहो हृदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम। रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा, निश्चल गोविंद ताम। भगवंत भगत को पाओ किछ नाही, आदर देवत जाम। तज गोपाल आन जो करणी, सोई सोई बिन सतकाम। चरण कमल हृदय गोह नानक, सुख समूह विश्राम। ए पावन शब्द पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की मुबारक रसना तो राग जैतसरी विच उचारण किया होया है। ते तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंग 702 उत्ते सवायमान है। इस शब्द अंदर सतगुरु जी परमेश्वर दे सिमरन की बरकत अते उस प्रभु का नाम जपण वाले गुरसिखां की महानता का वर्णन करते हुए फरमाते हैं, हर जन सिमरहो हिरदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवै पूरन दास के काम। रहाओ शब्द दियाँ रहाओ दियाँ पंक्तियाँ अंदर शब्द का मुखसार हुंदा है। शब्द दे आरंभ दियाँ इस रहाओ वालियाँ पंक्तियाँ अंदर गुरु साहब फरमाते हैं कि हरी जे दे जन भाव गुरमुख मन करके उस निरंकार का नाम जपते हैं अते इन्हां भगत जनां नूं कोई भी मुसीबत नहीं आती। भगतां दे सारे ही काम प्रभु आप ही सवार देंदा है। शब्द दियां इन्हां उपरोक्त सत्रां अंदर एक बहुत वड्डी फिलासफी छिपी हुई है जिन्हां तो यह जग्यासा मन विच पैदा हुंदी है कि हर जन कौन है, उसकी पछाण की है, हर जन किवें बनिया जा सकता है, हर जन बनन तो बाद उस नूं की प्राप्त हुंदा है। तो इन्हां सवालों का जवाब भी सानू गुरबाणी अंदर ही प्राप्त हुंदा है। असल विच हर जन एक विशेषण है। व्याकरण अनुसार किसी वस्तु जां व्यक्ति दे गुणां नूं प्रगटाउण वाला अखर विशेषण कहाउंदा है। गुरबाणी अंदर सानू हर जन दे नाल नाल ही भगत संत गुरमुख हरदास गुरसिख ब्रह्म ज्ञानी सतपुरख आदि अनेक अखर पढ़न नूं मिलदे हन। असल विच इन्हां सारे ही अखरां दा अर्थ एक ही है जो कि प्रभु दे अपने गुणां नूं ही उजागर करता है। जिवें संसारक जीवन अंदर सानू बेअंत वार देखण विच मिलता है कि संगत का असर मनुखता दे नाल नाल पशु पंछी अते वनस्पति तक भी कबूलते हैं। जिवें तोता जिस माहौल विच रहिंदा है उही बोली बोलन लग पैंदा है। चंदन दे दरख्तां दे नाल वसण वाले बाकी वनस्पति दे अंदर भी खुशबू पैदा होनी शुरू हो जाती है अते फुल्लां दे बाग दी होंद भी दूरों ही उस दी खुशबू राहीं अपनी होंद दा पता लगा देंदी है। इसे तरह ही परमेश्वर दा नाम जपण वाले अते हमेशा प्रभु दे भगतां दे नेड़े रहण वाले जीवां अंदर भी ये सारे सतगुण अपने आप ही आ जाते हैं, प्रभु दा ही रूप बन जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी रचना विच इस अवस्था की प्रोड़ता करते हुए फरमाते हैं, हर हर जन दो एक है, बिब विचार किछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखे समाहे, अते आत्म रस जह जानई, सो है आत्म देव, ब्रह्म है मोह मह तास मह रंचक नाहन पेव। कबीर जी अनुसार कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ मह रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू मुताबिक। जिमें सूरज अते उसकी किरण, चंद्रमा अते उसकी रोशनी, समुद्र अते उस दे अंदर उपजी लहर विच कोई फर्क नहीं हुंदा। इसे तरह हरी अते हरी दे जन एक ही रूप हुंदे हन। कोट बिगन बिन सह हर सेवा, निचल गोविंद ताम। भगवंत भगत को पाओ किछ नाहे, आदर देवत जाम।

प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु का सिमरन उदरह मूचा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अर्जन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ यस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्व गणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जाँच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम एचआईएफ हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दाई जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:05 हो चुके ने। आ हुण जानदे आं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

रात 10:30 बजे तुसी आनंद माण सकोगे हिंदी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम सरगम दे जरिए। सो असी अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा, इस तों इलावा हिंदी पंजाबी ते अंग्रेजी समाचार अपने अपने समें ते प्रसारित कीते जाणगे। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण पेश है देशभक्ति समूह गाना।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाश

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन विच कपड़े पाउण तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके फाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता आरबीआई दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। आरबीआई कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
2: तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण पेश है आकाशवाणी दा अपना गीत यानी कि आकाशवाणी दा टाइटल सॉन्ग।

0: जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
0: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कवि लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना,

0: कार्य में, जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है। घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना, और इसलिए विश्वास और जनकल्याण, ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बता रहा है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
0: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
0: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज़्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
0: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो। तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बन करके उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है। आप खुद भी EV में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
1: जी।
0: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
1: जी।
0: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां PM 2.5 और PM 10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है।

0: इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज़्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है, और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना BP है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव-गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी, और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने NDC टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में कैपटाउन में गया

0: था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से रीइंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब

0: कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई है।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था, और जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहाँ पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता है ना, पक्षियों को छाव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो,

0: लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए
1: जी,
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहाँ से आती है
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे। कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
1: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इंपॉर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी।
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। साढ़े अगले प्रोग्राम का इंतजार करो।

ओम शांति, ओम शांति। ए शांति जिहड़ी चीज़ है ना, ओह अजकल हर इंसान चाहुंदा है। हर कोई चाहुंदा है कि उस दे मन नूं शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए। और यही सब तो कहिंदे ने कि चाहो तो बहुत सौखी चीज़ है और देखिया जाए तो बड़ी औखी चीज़ है। तो ऐसे तरह ना ए सवाल एक लै के एक भिक्षु कह लो या एक भगत कह लो महात्मा बुद्ध दे कोल पहुंचिया। उसने महात्मा बुद्ध नूं पुछया कि महात्मा बुद्ध, जेकर मैं अपनियां सारियां इच्छावां छड्ड दवां तां की मैनूं शांति मिलेगी? तां बुद्ध ने मुस्कुरा के कहा कि इह तां एक नवीं इच्छा हो गई, ते तूं कह रहा है इच्छावां छड्ड दां। बुद्ध ने कहा कि मैं तुहानूं इच्छावां छड्डण नूं नहीं कहिंदा, मैं तुहानूं कह रहा हाँ कि इच्छावां नूं समझो। तो जिस दिन तुसीं इन्हां इच्छावां नूं समझ लोगे ना, तां तुसीं कोई इच्छा कर ही नहीं पाओगे। इस तरह कहिंदे कि गुरबाणी दे विच वी एक शब्द आंदा ना कि विण तुद होर जे मंगणा सिर दुखां दे दुख, कि जदों असीं किसे भी चीज़ की मंग रखदे हां जां किसे भी चीज़ की इच्छा रखदे हां ना, आखिरकार उसका जिहड़ा अंत हुंदा ना, वह दुख ही हुंदा। वह सानूं किते ना किते दुख दे के ही जांदी है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहिंदे कि इच्छावां नूं समझ लोगे ना जिस दिन तुसीं, ते उस दिन ए सवाल ही खत्म हो जाएगा कि बई की मैं इच्छावां नूं छड्ड दवां ते मैनूं शांति मिलेगी। ते शांति चाहना भी यह भी एक इच्छा ही हुंदी है, इस करके जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं चाहना। कहिंदे कि जदों तुहाडी कोई भी इच्छा नहीं रहेगी ना, उस वक्त जो तुहानूं हासिल होएगा उसका नाम ही शांति है। जिस वक्त सुख ते दुख दी कोई भी तुहाडे खोज नहीं रहेगी, कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, उस वक्त जो तुहानूं मिलेगा ना उसका नाम आनंद हुंदा है। कि तुसी कुछ चाहना ही नहीं है, तुसी शांति भी नहीं चाहनी, चाहना ही कुछ नहीं है। कि ठीक है जो हो रहा है उस दे विच चली जाना, बिल्कुल सिंपल जे साधारण जे हो के जिस तरह जीवन चला रहा है चली जाना है। कुछ इच्छा रखनी नहीं मन दे विच, ना सुख चाहना है ना दुख चाहना है, कुछ भी नहीं चाहना। जदों चाहना खत्म हो जाती है ना, फिर इंसान नूं शांति मिल जाती है, फिर सुकून मिल जाता है। क्योंकि जिन्नियां भी असी इच्छावां रख लईए, कुछ ना कुछ वो अपना दुख नाल जरूर लैके आती है, वो अशांति जरूर नाल लैके आती है। इस करके जदों असी यह चीज़ां छड्ड दवांगे ना, फिर शांति मिल जाएगी। कहन नूं तां बहुत सौखी जी चीज़ है, लेकिन कित्थे इंसानी फितरत इच्छावां नूं छड्डदी है। कोई ना कोई इच्छा तां पैदा हो ही जाती है, कोई ना कोई ख्वाहिश मन दे विच आ ही जाती है। लेकिन कहिंदे कि जिस इंसान की यह वाली अवस्था बन जाए ना कि मैनू कुछ नहीं चाहिए, दुनिया तो मैनू कुछ नहीं चाहिए, रब तो भी मैनू कुछ नहीं चाहिए, उस वक्त जड़ा है इंसान बहुत हौला हो जाता है और फिर उसनू सुकून या शांति हासिल हो सकती है। और यह चीज़ा सानू आस पास वेखन नू मिल जांदियां ने, बेशक इंसानों के बहुत कित रेयर बहुत घट देखन नू मिलदियां ने, लेकिन कुदरत दी हर चीज़ ऐसे चीज़ दे विच शामिल है कि कोई इच्छा ही नहीं है। हुण सूरज हर रोज़ चढ़ता है, अपनी रोशनी दिंदा है, अपनी गर्माहट दिंदा है, और मतलब कि बिना किसी नागे दे वह हर रोज़ निकल रहा है करोड़ों सालों तो। कोई इच्छा नहीं है उसकी, चन्न भी कोई इच्छा नहीं है, आके अपनी चाननी बिखेरदा है। इस तरह जड़े पेड़ पौधे ने, तुसी उन्हां नूं पानी दवो ना दवो, कोई बचा

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते। पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही? जे कही है तां फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि अजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मंगदे।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दे विच एक बारी फिर तो आप सब दा बहुत बहुत स्वागत है। असी प्रोग्राम दे शुरुआत च गल कर रहे सी कि इच्छा जदों इंसान दी खत्म हो जांदी है, ना सुख दी इच्छा रहिंदी है, ना दुख दी इच्छा रहिंदी है, मतलब कोई चाहना ही नहीं रहिंदी है, उस वक्त इंसान नूं शांति या सुकून हासिल हो सकता है। कहिंदे ने कि इच्छा एक तां अपने मन दे विच भी ना रखो और दूसरा किसे तो कोई उम्मीद भी ना रखो। जदों असी किसे तो कोई उम्मीद रखदे हाँ, कोई आस बना लैंदे हाँ किसे दे प्रति, तां जदों वो आस टुटदी है, वो उम्मीद टुटदी है ना, उस वक्त भी इंसान बहुत दुखी हुंदा है, बहुत परेशान हुंदा है। जिद्दां आपां मतलब अक्सर असीं इदां ही करदे हां कि अगर किसे नूं मदद दी लोड़ पै गई, किसी दे कोई उत्ते औखी घड़ी आ गई, औखा टाइम आ गया, असी झट जाके उन्हां दी मदद कर दित्ती। अगर किसी नूं पैसे दी जरूरत पै गई तां असी बाहरों चक के भी पैसे दे दिते, है ना, उन्हां दी हैल्प कर दित्ती। ते फिर मन दे विच ऑटोमैटिकली एक चीज़ बिठा लैने आपां कि बई जदों कदी मैनूं लोड़ होएगी ते इह बंदा जरूर मेरे नाल खड़ा होएगा। ते जदों किते एहो जा हो जाए कि बई जदों सानूं कोई लोड़ पै गई और वो इंसान हाज़र ही नहीं होया, वो सानू विखिया ही नहीं, मदद तो दूर दी गल, हो सकता है कि उसनू कोई परेशानी होवे या कोई प्रॉब्लम होवे या वो चाहता होवे मदद करना लेकिन ना कर सकिया होवे, लेकिन साढ़े मन दे विच ए आ जाती है कि लो जी जदों इनू लोड़ सी तां असी तां लोकां तो उधारे चक के पैसे भी दिते, इनू इहदी मदद की और अज

0: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे,
1: अरे मस्तराम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: ठीक है दादली करूँ तो मुझको जेल भेज दो।

शरीर की हवा निकल गई। जैक लगाओ। ठीक ठीक ठीक ठीक। स्टेपनिंग पहिया। अरे पंपिंग।

0: जी हाँ, चाहे कोई खुश हो चाहे गालियाँ हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। जेकर कोई तरीफा भी करता थोड़ियाँ तो कोई गल नहीं जी, हवा च नहीं उड़ना, बहुत फुल्ले नहीं समाना, ठीक है। तरीफा हो गई तो हो गई, तो जेकर कोई गाला भी कड़ता है, बुरा भला कहता है तो कोई गल नहीं, कहता है तो कही जाए, सानू कोई फर्क नहीं। मस्त राम बनो, जो थानू सही लगता है वह करो, तो दुनिया की परवाह करन की जरूरत नहीं, लेकिन कोशिश यही रखना कि थोड़ा रस्ता जड़ा है वह सही होवे, थानू जरूर सही लगता होए। तो इसे ही नोट दे उत्ते साडा अज दा ये प्रोग्राम जिंदगी हसीन है इत्थे ही खत्म हुंदा है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर पेश है एक विशेष रेडियो रिपोर्ट, 12 साल बेमिसाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ देश ने पिछले 12 साल दौरान विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता के खेत्र में नवे मापदंड स्थापित किए ने। बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल क्रांति, गरीब कल्याण योजनावां ते किसान भलाई लई कीते गए यतना ने देश की तरक्की नूं नवी दिशा दिती है। इन्हां सालां दौरान भारत ने विश्व पद्धर ते अपनी मजबूत पछाण बनाई है अते हर वर्ग दे लोकां दी भलाई नूं केंद्र विच रख के कई इतिहासक फैसले लए ने। सेवा, सुशासन अते गरीब कल्याण नूं समर्पित ए 12 साल देश दे विकास यात्रा दे महत्वपूर्ण पड़ाव वजों याद कीते जा रहे ने। इस मौके ते आकाशवाणी नाल अपने विचार सांझे करदे होए
3: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि डॉक्टर अंजना भाटिया का नमस्कार। मोदी सरकार 12 बेमिसाल साल, अगर हम बात करें कि 12 सालों में मोदी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही, तो सबसे पहले तो डिजिटल इंडिया और यूपीआई क्रांति की बात आती है। भारत विश्व की अग्रणी डिजिटल भुगतान तंत्र बन चुका है और यूपीआई ने तो करोड़ों लोगों के लिए देन लेन को सरल, पारदर्शी बना दिया। जन धन, आधार, मोबाइल, त्रिशक्ति, जैम, करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ दिया गया है और गरीब कल्याण योजनाओं के सारे पैसे अब सीधे खातों में आते हैं। करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन, आवास, शौचालय, नल जल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेमिसाल विस्तार हुआ है, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, बंदरगाहें, अभूतपूर्व विकास। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टार्टअप इनोवेशन, तो भारत में इसका इनोवेशन बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है, ये सारा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। और पीएम किसान जैसे किसान हितैषी योजनाएं, ये भी बहुत ज़्यादा किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती, धारा 370 का हटना बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020, 34 वर्षों बाद शिक्षा नीति में एक व्यापक सुधार हुआ है और वैश्विक मंच पर G20, टेक्नोलॉजी, निवेश, कूटनीति, इसमें भारत ने अपनी पकड़ मजबूत की है। विकसित भारत का संकल्प है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा, आत्मनिर्भरता की दिशा में नए लक्ष्य हैं। तो आइए हम सब भारत के बेहद सुखद भविष्य की कामना करते हैं।
4: मैं तीक्षण सूद, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब, थानू सब नू बधाई देना चाहना कि मोदी जी अज भारत दे सब तो ज़्यादा लंबा समा लगातार इलैक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिहड़े रहे आ उन्हां दा हो गया है। और ये भी अपने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार।

0: है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम

प्रोग्राम सरगम दा अगला नगमा फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा तो आवाज़ा सोनू निगम ते श्रिया घोषाल दियाँ। इस गीत दे बोल लिखे गरिमा वाहल ते सिद्धार्थ सिंह ने, संगीत दिता विक्की प्रसाद ने।

सरगम दा अगला गीत फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं तो आवाज़ा उदित नारायण ते अलका याग्निक दियाँ गीत बो लिखे समीर ने ते संगीत दिता अनु मलिक ने।

प्रोग्राम सरगम दा आखरी नगमा फिल्म वीर तो आवाज़ा रूप कुमार राठौड़ श्रेया घोषाल ते सुजैन डिमेलो दिया। इस गीत दे बोल लिखे गुलजार ने ते संगीत दिता साजिद वाजिद ने।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कील स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। NTA ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय RS रघु।

0: जी दोस्तों, हाय नी मेरा बालम है बड़ा जालम, मैनू करदा है कदी कदी प्यार। क्या बात है जी। वैसे ये जड़ा प्यार है ना, जे कदी कदी भी करदा है ते उस प्यार दी तांग बहुत हुंदी है। इस करके जड़ा प्यार मिलदा है ना उनू ले ही चलो। प्रोग्राम सौगात दे विच तुसी आ सकते हो दोस्तों, 0181 2342 171 नंबर डायल करना है, 0181 2342 171 इस नंबर दे तुसी पंजाबी गीतां दी फरमाइश कर सकते हो। तुहाडा दोस्त शाम शर्मा तुहाडी उड़ीक कर रहा है इस फोन कॉल दे नाल। देखिए जी केड़े दोस्त ने। हैलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल सर जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सर जी, मैं राजू बोल रहा जी।
0: जी जी राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद सर जी थोड़ा भी जी।
0: किवें चंडीगढ़ दा हाल चाल? ठीक है,
1: बहुत वधिया ने सर जी। बारिश दा मौसम होया।
0: फिर बारा?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: पहला भी होके हटी है?
1: हाँ जी, इधर तो नहीं हुई पहला जी।
0: अच्छा, इधर नहीं हुई। लो जी, फिर बारिश का तुसी लुत्फ लैण दे लई तैयार हो जाओ जे हले तक नहीं लिया है। हाँ
1: हाँ
0: जी,
1: जी हाँ जी
0: ते वैसे ते हुण मानसून दा टाइम आण वाला है, ते मानसून
1: हाँ
0: दे
1: जी
0: विच हमेशा ही जिहड़ी बारिश है उहदे तुसी
1: हाँ जी हाँ जी, अपने ध्यान रखना चाहिए, सावधानी वरतो।
0: हाँ वो तो सावधानी तो वरतनी है। होर सुनाओ, अज फिर की तुसी फरमाइश लैके आए हो सब दोस्तों दे लई?
1: अजय सर जी, सुरेंद्र दे रंगीला चैटर दा सुनना जी, भांडे कली करा लो।
0: अच्छा, भांडे कली करा लो। ये की गल, हुण भी कितें लोड़ पै जांदी भांडे कली कराने वाले? नहीं कि भांडे
1: हाँ
0: कली
1: सर
0: कराने वाला
1: जी,
0: आंदा ही नहीं गा?
1: दिख जाता है जी, कदे कदे बैठे हैं बेचारा।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, चौंदा
0: अपनी
1: रहता भांडिया नू, पतीली नू, दड़बी नू।
0: है ते अज भी जिहड़े भांडे है वो कितें कितें कली हुंदे ने।
1: हाँ जी, बिच पता नहीं क्या चमक नहीं की जी पाए करता वे जी।
0: देखो किदां धुआं निकलदा सी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: देखो ना जी, ये भी एक नज़ारा सी जदों भट्ठी स्टार्ट करता सी, सारे बच्चे आले दुआले बैठ के
1: हाँ
0: वह
1: जी
0: नज़ारा
1: हाँ जी
0: लेंदे
1: हाँ
0: सी उस
1: जी,
0: वेले।
1: एक घर दे भांडे करता हुंदा तां फिर दूजे दे करता रहा, कई घरां दे करता रहा।
0: हाँ, किवें सब इकट्ठे हो के अपने भांडिया नू चमकवा लेंदे सी उहदे राही।
1: हाँ
0: हैं
1: जी हाँ जी, हुण तां स्टील ने जगह ले ली जी इहनां दी।
0: हाँ, हुण तां पहले ही चमकीले भांडे आ रहे जी इस वेले। हैं, अज फिर सुनाने हैं तुहानू एक गीत, भांडे कली करा लो। शुक्रिया कॉल करन दे लई जी।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
0: ओके जी, ओके।

0: जी दोस्तों, भांडे कली करा लो। वैसे तो जी राजू जी कह के गए नहीं कि कितने कितने दिखाई दे देता है, जदों भांडे कली करन वाला आ जाता है उस वेले सब इकट्ठे हो जाते सी, पर हुण ये चीज़ां हौली हौली वक्त मुताबिक तकनीक मुताबिक घट दिया जा रही ने। तो चलो जी, जदों हुण फिर नवीं चीज़ां आ जाए तो पुरानी चीज़ों नूं थोड़ा जिहा ठहराव मिल जाता है। लो जी कॉलर आए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो,
1: जी,
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मनजीत कौर बोल रहे हैं दिल्ली तो।
0: जी, मनजीत कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च दिल्ली वाले। होर की हाल चाल ने?
1: बस ठीक है जी, थैंक यू स्वागत के वास्ते, थोड़ा भी स्वागत है। ऐतवार कितने रहे सी?
0: बस एवें जी, तुहानू पता है कि कोई ना कोई मजबूरी हो जाती है, इस करके वैसे तो दिल नहीं करता बिल्कुल भी कि अपने परिवार तो वांझे होया जावे। ते ओ मजबूरी करके फिर हो जाता है। अज तक गल भी परिवार दी हो रही है मनजीत जी।
1: हाँ जी, मैं वही कहने लगी थी, मैं कहा किसी दे जोड़ मेले करान गए हो गए। वैसे तो लोग आजकल मोबाइल में भी कुछ नहीं, कोई नहीं, एक एक घर में भी नहीं बैठते इकट्ठे, अपने अपने
0: हाँ
1: कमरे में बढ़ जाते हैं फड़ के। पहला
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ए, देखो
1: पहला
0: ना,
1: होंदा सी प्यार,
0: हाँ
1: चुल्हे ते रोटी बनदी सी, भांडे कली हुंदे सी,
0: आय हाय
1: जेडे
0: हाय
1: अज
0: हाय
1: राजू जी ने कराए ने।
0: आय हाय हाय, क्या ही बात
1: ते
0: है।
1: चुल्हे असी ते तुहाडी मम्मी ते उत्थे ही बोरी विछा के सानू रोटी कहिंदे सी, इत्थे बैठ के खा लो मेरे कोल ही रोटी।
0: हाँ बिल्कुल, देखो चूल्हा नाल चलदा हुंदा सी ते नाल ही सारा परिवार बैठ के गरम गरम रोटी उत्थे बह के खा जांदा सी।
1: होर की है, ते
0: ते
1: हाली तक भी साडा ते बहुत प्यार है भैन भरावां दा।
0: वाह जी वाह, बिल्कुल। असी भी सोहणे रब नूं इही अरदास करदे हां कि तुहाडा परिवार इसे तरह खुशियां माणदा रहे और तुसीं इकट्ठे रह के
1: हाँ,
0: ही अपना
1: प्यार
0: सारियां
1: बनिया रहे
0: बनिया
1: बाकी।
0: रहे परिवार। बिल्कुल जी, ये जिहड़ा प्यार है ना, ये इसे तरह बनिया रहना चाहिए। यही तो मैं कह रहा कि जे हुण छोटा परिवार भी है तो घट्टो घट आपस दे विच ते गल्लां बातां जरूर करया करो ना,
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
0: इस चीज़ दी भी घाट हो गई है।
1: हाँ, चल पूछ लो राजी खुशी दा, इन्ने की भैन भरा खुश हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, देखो ये तो तुसी फोन दे राही पूछ लेंदे हैं, जे कोई तुहाडे घर आ जांदा है ना, वैसे ते कई सवाणियां तो मत्थे ते तीड़ियां ही पा लैंदियां ने।
1: ना जी ना, साडे ते सानू ते खुशी बड़ी चढ़दी है, कोई आ जांदा, कोई भी आए, अपना नहीं, कोई भी भैन भरा आए जां कोई, सानू असी ते खुश होके बोलने आ सारे नाल जी।
0: आए हाय हाय, चा चढ़ जांदा है कि
1: मत्थे
0: देखो।
1: चाह चढ़
0: हाँ
1: जांदा, चाह चाह नाल चाह बनाने आ,
0: आए
1: आंडिया
0: हाय,
1: गुआंडिया भी पियाने आ।
0: क्या बात।

0: दसो की लेना बादशाह
1: साड़ी जैम्पर सुरखी बॉर्डर पतिया कज्जल सत जालियां नौ परांदे अठ जुराबा नकली जुल्फा असली सुइयां इक दुपट्टा पतला पतला मोतियां आला सेंट जमेली ना पालश ते

0: हाय, वापस कदों आओगे सोनियो?
1: एक महीना दो महीने तीन महीने चिट्ठी पत्र लारा लप्पा अड्डी टप्पा एक साल फिर दो साल फिर तीन साल फिर हौली हौली किस आना ते किस जाना रड़ा रप्पा शोर शराबा फिर मुकदमा नार तरीका फिर तलाक ते
0: बस करो।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम सौगात दे विच अज गल्लां बातां बहुत खूबसूरत हो रही हैं। मेरी गल सुनो सरदार जी, ये गीत भी तुसी सुनिया ते राम प्रसाद जी कह रहे सन कि ये हुण तुसी सुनियो कि सरदार जी नूं की गल्लां बातां कह रहे ने। लो जी, फिर अगले कॉलर भी आ गए ने। देखिए जी, दोस्त आ गए ने, केड़े दोस्त ने? हैलो,
1: श्याम जी, सत
0: सत श्री अकाल जी।

0: जी दोस्तों, सावन महीना किणमिण किणमिण, बिल्कुल जी किणमिण किणमिण तो वैसे शुरू हो गई है। प्रोग्राम सौगात का वेला भी रह गया 10 मिनट का, तो कॉलर भी साढ़े को आ गए ने। हैलो,
1: हेलो,
0: स्वागत है जी प्रोग्राम च। कौन बोल रहे हो?
1: अमरीक सिंह
0: अमरीक सिंह जी, कितों बोलते हो?
1: जी।
0: फाजिलका तो जी। अमरीक सिंह जी, अक्सर प्रोग्राम सुनते हो जो कितने कितने प्रोग्राम?
1: प्रोग्राम सुनी था जी, हर रोज जी। बिल्कुल
0: हर रोज सुनते हो, चंगा लगता है। आज केड़ी फरमाइश लेके आए हो?
1: प्रगट भागो दिला दो कोई।
0: लो जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुनाने हैं तो प्रगट भागो की आवाज़ के गीत।

जी दोस्तों, प्रोग्राम सौगात दा वेला जिहड़ा है वह हुण मुकदा पिया है, इस करके इस प्रोग्राम दा आखिरी गीत तुहाडी नज़र कर रहे हैं जी। सुनदे हैं सुखविंदर दी आवाज़ दे विच गीत।

तै साहिब की बात जे आखै, कहो नानक क्या दीजै, सीस वडे कर बैसण दीजै, विण सिर सेव करी जै। ये कथन गुरमुख प्यारे जना अते उस परमात्मा विचाले प्रीत दा वर्णन करदा है। जे कोई उस प्रीतम दी बात सुनावे तां गुरमुख प्यारे अपना सीस अर्पण करन लई तैयार हो जांदे ने। उते अपने सीस नू अर्पण करके उसका आसन बना के प्रभु दी बात सुनावन वाले वडभागे जीव नू वो आसन ग्रहण करन वास्ते बेनती करदे ने। प्रभु दी प्राप्ति चतुराइयां स्याणपा नाल नहीं हुंदी, ना ही कोई दान कीत्या हुंदी है। भावें लखां मन सोना ही क्यों ना दान कर दिता जावे, प्रभु दी प्राप्ति तां मन अर्पण करके हुंदी है। कंचन स्यो पाया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। सरवण करदे हां भाई अनूप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: कंचन से वो पाया नहीं तोल, मंदे राम लिया है मोल। इस शब्द गायन कीता सी भाई अनूप सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी सुखवंत सिंह।
1: गौड़ी कबीर जी ते पदे, कंचन स्यों पाया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। रहाउ ब्रह्म कथ कथ अंत ना पाया, राम भगत बैठे कर आया। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज भागी। यह पावन पवित्र शब्द भगत कबीर साहब जी का उचारण किया होया है। यह शब्द गौड़ी राग दे अंदर साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे पावन अंग 327 दे उपर दर्ज है। गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब की संपादना करन समय जिथे गुरु साहबान की बाणी दर्ज कीती, उत्थे नाल ही भगतां भट्टां ते गुरसिखां नूं भी सन्मान बख्श के उन्हां दी बाणी नूं नाल दर्ज कीता है। भगत साहबान विचों सब तो ज़्यादा बाणी भगत कबीर साहब जी की है। विचार अधीन शब्द गौड़ी राग विच कबीर जी का ते पदे भाव तीन पदियां दे रूप विच उचारण किया होया शब्द है। शब्द के आरंभ विच भगत जी फुरमान करते हैं, कंचन स्यों पाईए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। शब्द के अंदर भगत जी

करता तू मैं मान ने माने माण महत नाम तन पले साचे शब्द समाणे। इस शब्द गायन कीता सी पाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

कच्चो कंचन पयो शब्द गुर सर्वने सुनियो। बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भनियो। लोयो होयो लाल नदर सतगुर जद तारे। पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो बिचारे। काठों श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुर चरण जिन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए। काठों श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुर चरण जिन परसिया से पस

0: जप दास पाठ बिनत कह, जो गुरु नाम रिद मह तरह, सो जन्म मरण दोहु ते रह।
1: गुरबिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सच विचार, गुरु करे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन, अगन कटे सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कौ नल कह, जिन गुरु ना देखियो नहु कियो, ते अक्यत संस

गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, होते जो प्यास प्योस पे बन के बंचत सिद्ध को बिद मिलायो। पूरन पाओ मन ठौर बसो, रस बासन सो जो दैद सुतायो। गोबिंद वा बाल गोबिंद परिसम, जलन तेर विपास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को।

सेव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गन तरे तेतीस गुर बचन सुन कन दे फुन तरे ते संत हित भगत।

जस सहज सो भए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदि नूर अर सहो कुरसो चटिए तुद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सज्जन सचा पातशाह सिर शाहद शाहो जिस पास बैठिया सोइए सबना दावे साहो सज्जन सचा पातशाह सिर शाहद शाहो जिस पास बैठिया सोइए सब

शिव मुन गए नाथ जात कबेलास को। जाकु जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पे किए फिर तू उदास को। सो तिन सतगुरु सुख भाई कृपाधारी जी

बोल जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास। रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोविंद ना सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

0: आस कर जाए नरासिकित फल फिके फुल बक बके काम नावे पत मिठ तिनी भी नानका गुण चंगिया तत सब को नवे आप को पर को नवे न कोए तर तराजू तो ले नवे सो बौरा होए अपराधी दुना जो हंता मृगा है शीस निवाई है क्या थी है जर देख सुदे जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संदे

0: सपूत सपूत महला पहला।
1: तगना इंद्री तगना नारी भलके थुक पवै नित दाड़ी। तगना पैरी तगना हथी तगना